ताले कर के पटू ते निवा नौ को तों को ते लेख छमो के लेमा स डा फर जक्षिने ता लोर जो फर जक्षिने जो बे के थुले ते दे बोता शा मेले जर बुका सशा दो जो पंग बा चेंगो शिद शमान जोंग लु शिद गोप पा लु शिद ता जो बे के थुले ते दे मेले के ताटू हिप था बा ओ दल रो पा चे रु शिद ता गो दी के नला ते फक दु हिता सो वरी दो शिद पगला हिजे पंग मा वरी दो शिद जुला मे शेल तो मा वरी दो शिद शारा आ चेला दी वरी दो शिद ताले मा का पंग मा छमो दे चेदा चेदा स्थान दे टेम दे दी बे के का ते ये दि चे जे के टेंगो ते आ लु शे के दे दे लेगा के पंग मा छमो दे तरो रो बो शे के नल छोला दे बे के का थेला ता खा चा नेमी ᱱᱚᱜᱚᱛᱟ ᱥᱟᱱᱟᱵᱨᱮ ᱡᱟᱨᱵᱩᱠ ᱭᱩᱞ ᱱᱟᱠᱷᱭᱟᱞᱮ ᱛᱮ ᱱᱚᱜᱚᱛᱟ ᱥᱚᱦᱚᱨᱤ ᱛᱮ ᱱᱚᱢᱩᱠ ᱛᱟᱜᱟ ᱦᱚᱞᱚ ᱛᱚᱡᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱞᱮ ᱪᱷᱟᱢᱚᱜ ᱭᱩᱞ ᱫᱟᱫᱟ ᱛᱟᱵᱤ ᱠᱮ ᱛᱩᱞᱟ ᱛᱮ ᱢᱮᱞᱟ ᱪᱮᱞᱮ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱥᱤ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟ ᱛᱚᱡᱮ ᱡᱮᱞᱤ ᱠᱮ ᱪᱮᱫ ᱥᱚᱞᱚ ᱛᱮ ᱯᱮ ᱥᱟᱱᱥᱤ ᱠᱮ ᱠᱚᱨᱟ ᱛᱚᱡᱮ ᱛᱮ ᱡᱟᱨᱵᱚ ᱨᱚᱵᱚ ᱥᱮ ᱠᱮ ᱠᱚᱱᱫᱚᱞᱟ ᱠᱟᱫᱟ ᱠᱟᱨᱵᱟ ᱠᱟᱞᱮ ᱥᱮ ᱱᱟᱞᱟ ᱠᱮ ᱫᱮ ᱭᱟᱞᱟ ᱵᱟ ᱠᱮ ᱥᱟᱱ ᱢᱟᱨᱩ ᱛᱟ ᱪᱮ ᱵᱟ ᱥᱤᱱ ᱠᱮ ᱞᱟᱢᱟ ᱞᱟ ᱢᱤᱠᱮ ᱫᱚᱥᱚ ᱣᱚᱡᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱩᱥᱮ ᱠᱮ ᱞᱟᱨᱜᱮ ᱞᱟ ᱢᱮᱨᱤᱠ ᱫᱚᱥᱚ ᱣᱚᱡᱮ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱢᱮᱞᱤᱠ ᱞᱩᱡᱩ ᱛᱮ ᱱᱮ ᱠᱮ ᱜᱚᱨᱤ ᱛᱟ ᱥᱟ ᱮᱱᱤᱠ ᱥᱟᱝᱜᱚ ᱢᱟᱠᱤᱱᱟ ᱢᱮᱞᱮ ᱠᱮ ᱭᱩᱛᱚᱱ ᱜᱚᱢᱵᱩ ᱠᱟ ᱥᱟᱛᱮ ᱫᱟᱱᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱮ ᱯᱮᱥᱤ ᱜᱚᱢᱚᱛ ᱡᱟᱥᱤ ᱜᱚᱢᱩ ᱠᱚᱢ ᱯᱟᱵ ᱫᱚ ᱡᱚ ᱛᱟ ᱡᱟᱫᱚᱱ ᱜᱚᱢᱩ ᱠᱚ ᱥᱚᱛ ᱛᱟ ᱦᱤ ᱚᱨᱜᱨᱤ ᱡᱟᱥᱤ ᱜᱚᱢᱚᱛ ᱯᱟᱵ ᱫᱚᱥᱚ ᱦᱚᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱚ ᱛᱤᱠᱤ ᱠᱮ ᱢᱤᱛᱤ ᱛᱟ ᱮ ᱯᱮᱥᱤ ᱥᱟᱞᱮᱱ ᱫᱚᱛᱚᱱ ᱱᱮᱫᱟ ᱱᱮᱫᱟ ᱡᱚᱞᱨᱤ ᱛᱟ ᱞᱟᱢᱨᱤ ᱡᱟᱨᱵᱚ ᱜᱚᱥ ᱥᱟᱥᱟ ᱫᱚ ᱡᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱹᱛᱩ ᱥᱚᱵ ᱥᱤᱛᱟ ᱦᱤᱯ ᱛᱟ ᱵᱤᱠᱮᱞ ᱜᱚᱵᱩ ᱠᱚ ᱯᱟ ᱟᱫᱟ ᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱞᱨᱤ ᱥᱟᱫ ᱛᱟ ᱜᱚᱨ ᱨᱚᱱᱤ ᱠᱚ ᱯᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱞ ᱫᱚᱞᱩᱝ ᱨᱚᱛᱚ ᱥᱤᱫᱟ ᱪᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱤᱠᱮᱞ ᱞᱩᱛᱩᱱ ᱫᱚᱱ ᱫᱚᱫᱟ ᱵᱟᱥᱮ ᱡᱟᱱᱟ ᱯᱚᱱ ᱡᱟᱱ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱥᱚᱠ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱤᱠᱮᱞ ᱞᱩᱛᱩᱱ ᱫᱚᱱ ᱫᱚᱫᱟ ᱵᱟᱥᱮ ᱱᱚᱵᱩᱱ ᱛᱟᱜᱟ